0: रेडियो सुनो 91.7 FM कदर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो सुनो
1: पाटू पाड़वा पाटू पेशवा